0: उस्ताद बिस्मिल्ला खा आणि सहकाऱ्यांनी सनईवर वाजवलेला राग आसावरी आपण ऐकला. आपण ऐकत आहात आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राचं प्रसारण, FM बँड 101.7 MHz. यानंतर ठीक 6 वाजता हिंदीतून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जातील. आम्ही त्या सहक्षेपित करणार आहोत.
1: सुनते हैं समाचार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया. इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है. ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है. विरासत भी विकास जी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है.
3: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं.

0: आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहां तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपण ऐकत आहात आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राचं प्रसारण। 6:05 झालेली आहेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम अमृतधारा। अमृतधारा या कार्यक्रमात आता ऐकूया कला याविषयी डॉक्टर रामेश्वर वाकणकर यांचे विचार।
3: कला हा मानवी जीवनाचा अमूल्य अलंकार आहे। मानवी संस्कृतीचा आणि संस्कृतीच्या विकासाचा आरसा म्हणजे कला होय। मानवी मनातील भावना, सौंदर्य आणि विचार व्यक्त करण्याचं कला हे एक सशक्त माध्यम आहे। मनुष्य आणि प्राणी यांच्यात अनेक गोष्टी सारख्या असतात। आहार, निद्रा, भय या गोष्टी प्राण्यांमध्येही असतात। मग माणसाला प्राण्यांपेक्षा श्रेष्ठ कोणी बनवलं? तर माणसाला विचार करण्याची आणि भावना व्यक्त करण्याची शक्ती

हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबका है एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। स्वच्छ भारत का है जन अभियान, घर घर तक ये पहुंचे पैगाम। गली गली सड़क सड़क पूरा शहर स्वच्छ हो, एक अकेला क्या करे इसमें सबका साथ हो। स्वच्छ बने ये भारत सारा, घर घर में फैले उजियारा। सफाई का ये पावन अभियान, मिलकर बनाए भारत महान।

0: दिलखुलास हा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हडपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त

0: उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं ये कहना चाहूँगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में

0: जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
1: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में PV सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct

0: आपण ऐकत होतात संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचा आकाशवाणी वृत्तांत पायीवारी पंढरीची. आज यामध्ये तरडगाव ते फलटण दरम्यानच्या पालखी सोहळ्याविषयी आपण ऐकलेत. निवेदन केलं होतं अजय गिजरे आणि श्रेया गोलीवडेकर यांनी. तंत्रसहाय्य होतं वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहाय्यक दयानंद भगत यांचं आणि सादरकर्ते होते प्रवीण कुलकर्णी. ही आकाशवाणी सातारा केंद्राची निर्मिती होती.
1: आणि हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
2: आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर. यानंतर ठीक 9 वाजता उर्दूतल्या बातम्या आमच्या केंद्रावरून.
3: ये आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर है. शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए. पहले खास खबरों की सुर्खियां. मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू. वज़ीर-ए-आज़म ने 75 नए सिरे से तामीरशुदा तरक्की याफ्ता अमृत रेलवे स्टेशनों का किया इफ्तिताह. एसटी कॉरपोरेशन के तकरीबन 13.5% किराया बढ़ाने की तजवीज़ को मंजूरी. एमपीएससी का ऑनलाइन इम्तिहानात मुनाकिद करने का फैसला मुलतवी. एसआईआर प्रोग्राम में 8 अगस्त तक तौसी. छत्रपति संभाजीनगर के करीब दो हादसात में 4 की मौत. और माहौर की रेणुका देवी मंदिर के तांबोल प्रसाद को GI टैग. अब खबरें तफसील से. मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कल शुरू हुई. हरियाणा के जींद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली इस ट्रेन को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. भारत अब दुनिया के उन 4 ममालिक में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन ट्रेनें चला सकते हैं. ये ट्रेन जो साफ़ सुथरे और पायदार ट्रांसपोर्ट को अपनाने की जानिब एक अहम कदम होगी, रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अलामत है. उसे मुकम्मल तौर पर देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन और तैयार किया गया है. 3200 हॉर्स पावर की इस हाइड्रोजन ट्रेन में 10 बोगियाँ हैं और ये एक वक्त में 2500 मुसाफिरों को ले जा सकती है. इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा,
4: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा. मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
3: इस मौके पर वजीर रेलवे ने खिताब करते हुए कहा,
5: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है. उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है. कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे. मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ.

अमृत भारत स्कीम के तहत मुल्क के 75 नए सिरे से तैयार करदा अमृत रेलवे स्टेशनों का कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया। पंजाब के शहर जालंधर में मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये रेलवे स्टेशन हमारे मुल्क के शानदार विरसे की नुमाइश करते हैं। कल इफ्तिताह किए गए इन 75 रेलवे स्टेशनों में महाराष्ट्र के नांदूरा और बारामती रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बारामती रेलवे स्टेशन पर मुनाक़िदा प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला और पुणे ज़िले की सरपरस्त वज़ीर सुनीत्रा पवार मौजूद थीं। नायब वज़ीर आला पवार ने कहा कि बारामती रेलवे स्टेशन की तामीर नौ से पूरे मगरबी महाराष्ट्र की इक्तिसादी, सनअती, तालीमी और ज़रई तरक्की को एक नई तहरीक मिलेगी। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कल नई दिल्ली में मरकज़ी काबीना की मीटिंग हुई। मुलाकात में आइंदा पार्लिमानी इजलास की पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। दरियासना मानसून इजलास के पेश नज़र हुकूमत ने कल इतवार को पार्लियामेंट में सियासी जमातों के ग्रुप लीडरों की मीटिंग बुलाई है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास कल 20 तारीख को शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मसनूई ज़हानत, सेमी कंडक्टर्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की तरक्की के तीन अहम सुतून होंगे। वो आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम क्वांटम टेक्नोलॉजी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अख्तिताम पर वर्चुअल मीटिंग में मुखातिब थे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन को मौसर तरीके से नाफिज करते हुए रियासत में एक काबिल क्वांटम इकोसिस्टम बनाया जाएगा जो कौमी क्वांटम मिशन से मुताबिकत रखेगा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने नेशनल क्वांटम मिशन के लिए तकरीबन 6000 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने तकरीबन 13.5% किराया बढ़ाने की एसटी कॉरपोरेशन की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। ये फैसला खलीजी ममालिक में जंग जैसी सूरत हाल के बाइस डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, टायरों और देखभाल के अखराजात में नुमाया इजाफे पर गौर करने के बाद किया गया है। दरियासना इस फैसले से आम बसों के पहले किए गए 10% मौसमी किरायों में इजाफा मनसूख हो जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। इलाकाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओला और उबर जैसी कंपनियों के लिए बुनियादी किराया तय करेगी। ये कंपनियाँ इस शरह से ज़्यादा कीमतों में गैर माकूल कमी या इजाफी किराया वसूल नहीं कर सकेंगी। ऐप पर मबनी मुसाफिर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए नई पॉलिसी को रियासती हुकूमत ने नाफिज किया है जिसमें ये इंतज़ाम शामिल है। इस पॉलिसी में प्राइवेट गाड़ियों को कारपूलिंग की इजाज़त देते हुए हुकूमत ने इससे मुनाफा को ममनू करार दिया है। गाड़ी का मालिक सफरी अखराजात सिर्फ साथी मुसाफिरों में बांट सकता है। राइड पूलिंग सर्विस में खवातीन मुसाफिरों को सिर्फ एक खातून ड्राइवर या खातून साथी मुसाफिर के साथ सफ़र करने का इख्तियार होगा। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात मुनाकिद करने का फैसला मुलतवी कर दिया है। लिहाजा महाराष्ट्र ग्रुप सी सर्विसेज मुश्तरका इब्तदाई इम्तिहान 2026 ऑफलाइन मुनाकिद किया जाएगा। इस इम्तिहान के लिए अब 31 जुलाई तक दरख्वास्तें दी जा सकती है और 3 अगस्त तक ऑनलाइन फ़ीस अदा की जा सकती है। नई दरख्वास्त देने वाले तलबा को दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त ज़िलाई मरकज़ का इंतखाब करना होगा। ग्रुप सी सर्विसेज जॉइंट इब्तदाई इम्तिहान 25 अक्टूबर को और ग्रुप सी सर्विसेज जॉइंट मेन इम्तिहान 27 दिसंबर को होगा। वोटर लिस्टों की खसूसी गहराई से नज़रसानी यानी SIR प्रोग्राम को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कोकण, मुंबई और रियासत के कुछ दूसरे मकाम पर शदीद बारिशों की वजह से पैदा होने वाले खलल को देखते हुए मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आखिरी तारीख में तौसी की है। हतमी वोटर लिस्टें 19 अक्टूबर को शाये की जाएगी। परभनी ज़िले ने वोटर लिस्टों की खसूसी गहराई से नज़रसानी में रियासत के टॉप 8 अजला में जगह हासिल की है। ज़िले के 15,41,007 वोटर्स में से 8,63,608 वोटर फार्म की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल कर ली गई है जबकि 8,62,880 फार्म BLO के जरिए तस्दीक के साथ मौसूल हुए हैं। कल छत्रपति संभाजीनगर के करीब 2 हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। शोलापुर धुलिया शाहरा पर वाक़ निपानी में पेश आए एक हादसे में परभनी ज़िले के पाथरी तालुके के गुंज संस्थान शिव आश्रम के डीन कालिदास महाराज बोरीकर और एक खातून की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से टकरा गया। पुणे हाईवे पर वाक़ भिंडाला गाँव के करीब एक और हादसे में जालना ज़िले के 2 नौजवानों की मौत हो गई।
ان نوجوانوں کے نام ریتیش راٹھوڑ اور اوینا

चौहान है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये दोनों दोपहिया गाड़ी पर होने सवार थे कि एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। नांदेड़ जिले के माहूर की रेणुका देवी मंदिर के तांबुला प्रसाद को GI टैग मिला है। चेन्नई की जोग्राफियाई इंडेक्स की रजिस्ट्री ने इस जिम्मन में एक सर्टिफिकेट जारी किया है। चंद्रकांत भूपी और समीर भूपी रेणुका देवी मंदिर के ट्रस्टी और चीफ पुजारियों ने इसके लिए अहम ताउन किया है। नांदेड़ में ज़िला मनसूबाबंदी कमेटी के इख्तराई इकदाम के तहत कायम EV फास्ट चार्जिंग स्टेशन का कल ज़िले के सरपरस्त वज़ीर अतुल सावे ने इफ्तिताह किया। ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के मकसद से कायम किया गया है। दरी असना सरपरस्त वज़ीर सावे ने नांदेड़ लातूर कौमी शाहरा पर विष्णुपुरी में फ्लाईओवर के मुनहदिम होने वाले हिस्से का मुआयना किया। सावे ने यह भी वाज़ह किया कि वाकये की तहकीकात जारी हैं और अगर किसी भी किस्म की लापरवाही पाई गई तो मुजरमों के खिलाफ कवायद के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। परभनी, हिंगोली और नांदेड़ अजला और विदर्भ समेत मराठवाड़ा के बेशतर मकामात पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल छत्रपति संभाजीनगर शहर समेत ज़िले के कई मकामात पर बारिश हुई। बीड़ और अहिल्यानगर अजला के कई मकामात पर कल मूसलाधार बारिश हुई। भारत की PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खवातीन की सिंगल्स मुकाबले के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। जापान की आलमी नंबर 11 खिलाड़ी नोजोमी ओकोहारा के टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने के बाद सिंधु को वॉक ओवर मिला। आज सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन के चौथे नंबर की चेन यूफेई से होगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छत्रपति संभाजीनगर के मुक्केबाज दिशा पाटिल ने गोल्डन बेल्ट इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीता। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने रोमानिया की ब्रेल में मुनाकिदा गोल्डन बेल्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद दी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू। वज़ीर आज़म ने 75 नए सिरे से तैयार तरक्की याफ्ता अमृत रेलवे स्टेशनों का किया इफ्तिताह। ST कॉरपोरेशन के तकरीबन 13.5% किराया बढ़ाने की तजवीज़ को मंजूरी। MPSC का ऑनलाइन इम्तिहानात मुनाकिद करने का फैसला मुलतवी। SIR प्रोग्राम में 8 अगस्त तक तौसी। छत्रपति संभाजीनगर के करीब 2 हादसात में 4 की मौत और माहूर की रेणुका देवी मंदिर के तांबुल प्रसाद को GI टैग। इसके साथ ही इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।

0: सुबह ही प्रोग्राम में आज आप समाप्त कर रहे थे भजन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, चलिए आज की तारीख याद कर लेते हैं। आज है 18 जुलाई 2026 और अब वक्त हुआ है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो आज ही के दिन 18 जुलाई का ये दिन था जब भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को मंजूरी प्रदान की गई। और 1976 में ओलंपिक खेलों में पहली बार किसी जिम्नास्ट को परफेक्ट 10 स्कोर मिला। रोमानिया की जिम्नास्ट नादिया कोमनेसी को 10 में से 10 अंक मिले। और सन 1980 में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी एक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। और श्रोताओ, अब हम आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं।
2: लिसनर्स, वी आर पेइंग आवर ग्रेट ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट लेजेंडरी भूपेंद्र सिंह, द ग्रेट गजल सिंगर, playback vocalist. Bhupendra was known for his rich, deep and soulful voice, and he gave audiences unforgettable classics like Dil Dhoondta Hai, Karoge Yaad. Farat, what are you adding to this list?
1: जी बिल्कुल, फिल्म मौसम के गीत के लिए उन्हें कौन भूल सकता है। अपनी जवादारी गंभीर आवाज से मखमली एहसास पैदा करने वाले महान गायक भूपेंद्र सिंह का जादू हमेशा सिर चढ़कर बोला। तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म से ये गीत।

0: और अब श्रोताओं, हम याद कर रहे हैं आरती मुखर्जी को। 1955 से सिंगिंग करियर में एक्टिव रही और कई भाषाओं में वो गाने गा चुकी हैं। इन्होंने हिंदी फिल्में गीत गाता चल, तपस्या और मासूम के लिए शानदार गाने गाए। आरती मुखर्जी ठुमरी से भजन, ठप्पा, तराना और गजल तक हर तरह के सॉन्ग गाने में माहिर रही। शेखर कपूर की फिल्म मासूम में उनका जो सॉन्ग था दो नैना, वो काफी लोकप्रिय रहा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।
1: Of Priyanka Chopra. She has to her accolade

0: 2 National Film Awards, 5 Filmfare Awards, and she has also been honored with the Padma Shri. So indeed, many, many good wishes to the beautiful and so versatilely talented Priyanka Chopra. Birthday wishes from the entire team of Art Survey.
1: और अब हम बात कर रहे हैं भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने आज के दिन हमें अलविदा कहा, राजेश खन्ना की। अपने रुमानी अंदाज, स्वाभाविक अभिनय और कामयाब फिल्मों के लंबे सिलसिले के बल पर करीब 1.5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना के करियर को उड़ान दी और देखते ही देखते वो युवा दिलों की धड़कन बन गए। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत।
2: आपकी उम्र क्या?
3: 30।
2: 30, 100 में से 30 गए कितने रह गए दोस्त?
3: 70।
2: आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम है आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा।
3: आप कहना क्या चाहते हैं?
2: यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मुशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मुशाए, जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं तो फिर डर किस बात का?
4: मैंने तो

0: And listeners, you know, the great blockbuster movies like The Train, Sacha Jhoota, Safar, Aan Milo Sajna, Kati Patang, Mehboob Ki Mehndi, these are some of the films where Rajesh Khanna left an indelible mark.
1: Ji, bilkul, Sarabjit. Aur abhi hum jis film se geet sun rahe hain, Anand film ye rahi, aur Amitabh Bachchan ke saath bahut hi acha kirdaar inhone nibhaya. Ek dosti ki jo misal hai, wo dekhne ko is cheez mein mil jati hai. Aur sashakt abhinay ka ek udaharan bhi isme dekhne ko milta hai. Ek lailaj bimari se peedit vyakti कि किरदार को राजेश खन्ना ने जिंदा दिल इंसान के रूप में जीकर कालजयी बना दिया. तो बहुत ही अच्छी फिल्म इन्होंने दी. और इसके अलावा आराधना फिल्म की हम बात कर रहे थे तो इस फिल्म के जो गीत थे वो भी काफी लोकप्रिय रहे. कोरा कागज था मन मेरा, तो आइए सुन लेते हैं.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. अब खबरें नशे की जाएंगी.

आदाब, ये आकाशवाणी है। ज़मीर रज़वी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज़ करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। एजेंसी ने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुँच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मकाम के प्ले ऑफ मैच में फ़्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के शहर जालंधर से 20 रियासतों के 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के तहत जदीद बनाया गया है। ये प्रोग्राम स्टेशनों को जदीद बनाए जाने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में शामिल है। मुसाफिर सहूलतों के लिए की गई इन स्टेशनों की जदीदकारी पर तकरीबन 1,570 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन स्टेशनों को विरासत भी विकास भी के जज्बे के साथ नए सिरे से तैयार किया गया है और इस अमल में मकामी सकाफत, विरासत और फन तामीर का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने करतौली अम्बाला ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमृतसर और वाराणसी के दरमियान संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसकी वजह से भारत के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम रूहानी और सकाफती दो मराकज़ के दरमियान براہ راست ریل خدمات شروع ہو گئی ہیں۔ وزیراعظم نے 4 لین والے گرین فیلڈ دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کے 30.9 کلومیٹر کے 6ٹے پیکج کا بھی افتتاح کیا۔

मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि इन 75 तजदीद शुदा रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवेज़ के जरिए पिछले कुछ बरसों में की गई यकसर तब्दीली की अक्कासी होती है। इससे पहले दिन में वज़ीर आज़म मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी और 79 किलोमीटर का फासला महज 2 घंटे में तय करेगी। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के जुमागच इलाके में BSF की 18वीं बटालियन की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। ये चौकी भारत बांग्लादेश सरहद के करीब वाक़ है। वो BSF से मुतालिक बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर दाखला सिलीगुड़ी में एक मीटिंग की सदारत भी करेंगे जिसमें रियासत में सरहद पर बंदोबस्त और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल टेलिन में स्टोनिया के खारजी उमूर के वजीर मार्गस सखना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल तब्दीली, साइबर सलामती और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के शोबों में भारत स्टोनिया इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारती माहदे से मुतालिक बातचीत के कामयाब अख्ताम के बाद नए मौके पैदा करने के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब सखना की मौजूदगी में भारत स्टोनिया कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल सलाहियतों और आलमी दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के इम्तिजाज को भारत यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारती माहदा फ्रेमवर्क की मदद मिलने से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग मिल सकता है और भारत यूरोपीय यूनियन साझेदारी मज़ीद मजबूत हो सकती है। स्काई रूट एरोस्पेस आज सुबह विक्रम 1 को पहली बार उसके मदार में पहुंचाएगा। प्राइवेट कंपनी के जरिए तैयार किया गया यह भारत का पहला रॉकेट है जो सयारचों को खला में ले जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के खलाई सफ़र में एक तारीखी नया बाब करार दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 4 सतहों वाले इस रॉकेट को तेज़ रफ्तारी से और मांग किए जाने पर सयारों को खला में ले जाने की खिदमत फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। एजेंसी ने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों की हलाकत की तहकीकात के लिए कहा है। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ से मुतालिक कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के हुकाम से जोर देकर कहा कि वह तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करें और महीने के अवाखिर में इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के जिन वाकयात की इत्तला दी गई है उनकी जवाबदही कायम करें। जनाब टर्क ने अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील की है क्योंकि खित्ते में कशीदगी का सिलसिला लगातार जारी है। हाई कमिश्नर ने सभी हलाकतों की फौरी, मुकम्मल और गैर जानबदाराना जाँच के लिए आवाज़ उठाई है जो बेचैनी के सबब वाक़ हुई हैं। इस दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हुकूमत हमेशा कहती रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ के सभी ज़ेर इंतज़ाम इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं। गजा में आज एक तदफीन के दौरान हुए इसराइल के फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 7 लोगों की मौत हो गई और दीगर 22 ज़ख्मी हो गए। नुसीरत पनागुजी कैंप में वाक़ अवदा अस्पताल ने हलाक होने वालों की तादाद की तस्दीक की है। इस हमले पर इसराइल फ़ौज की जानिब से कोई फौरी तबसरा नहीं किया गया। इसराइल और हमास ग्रुप गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जंग बंदी समझौते पर राज़ी हुए थे जिसका मकसद 2 साल तवील जंग को रोकना था। इंतहाई शिद्दत की लड़ाई अब कम हो गई है, ताहम जंग बंदी के निफाज के बाद से गजा में कम अज़ कम 1,123 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन समझौते के नाकाम होने के बाद अमरीकी फ़ौजों ने कल लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद कल रात जुनूबी बंदरगाही शहरों बंदर अब्बास और सिरिक में कई धमाके सुने गए। दूसरी जानिब ईरान ने कहा कि उसके ड्रोन्स ने खित्ते में मौजूद अमरीकी मोर्चों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर उर्दुन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज को निशाना बनाया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में
16,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत

के तीन कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का मुश्तरक तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से पुणे खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, सफ़र के वक्त और ट्रैफिक में कमी आएगी, नीज़ सनअती व इक्तसादी तरक्की को फ़रोग हासिल होगा। इन प्रोजेक्टों पर डिज़ाइन, रकूम की फराहमी, तामीरात, कामकाज और मुंतकली DFBOT की तर्ज पर अमल दरामद किया जाएगा, जिन्हें 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैक्सिको के जनूबी साहिल पर कल 7.4 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉर्न ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलजले के बाद

0: जंजबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मोइनवी, जो भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले सदर मोइनवी ने कल चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 63वें तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। मारूफ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दुनिया के चौथे नंबर की खिलाड़ी चीन की शेन यूफी को शिकस्त दी। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राचं प्रसारण। सकाळचे ठीक 10 वाजलेत। आता आस्वाद घेऊया गीत गुंजन या कार्यक्रमाचा। कार्यक्रमातलं हे सुरुवातीचं गीत आहे हा खेळ सावलांचा या चित्रपटातलं। आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल आणि सहकाऱ्यांनी गायलेलं हे गीत आहे सुधीर मोघे यांचं। संगीतबद्ध केलं आहे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी।

0: सर्जन।
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं
0: है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।